पंडित शिव कुमार ऑन द संतूर विद राग पहाड़ी जाल द्याद्रा ऑन दैट पीस ही वॉज अकंपनीड बाय राम कुमार मिश्रा ऑन दी तबला. Probably another 15 minutes for the show. I